इंसान कठोर हृदय वाला बनकर चारों ओर भय का वातावरण पैदा कर रहा है। महापुरुष इसकी भावनाओं को बदलकर इसे समझाते हैं कि मानव तू किसी का बुरा मत मांग, तू किसी का बुरा मत कर, तू धरती को नरक मत बना, इसके बजाय तू दूसरों का ख्याल कर, इंसानियत को अपना कर, मानव की दिल से कदर करते हुए तू दूसरों को चैन सुकून देने वाला बन।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਬੋ ਮਤ ਡਾਂਗਰ ਬੱਚੂ ਕਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਲੜੀ ਰਹੂੰਗਾ।
1: तो चाची तो क्या कहना चाह भी जोन सी तेरी जिंदगी तो इस ते खुशा।
0: बस खुश क्या, अभी पढ़े लिखे हो तो बंदा रामदारी करा, कुछ कहीं बाहर अंदर जा, शहर बाजार में घूमन जा, बाहर रहा। मैं तो अनपढ़ा भी खेती घर का काम कर रही है अपना, पढ़े लिखा होना चाहिए ना बंदा जरूरी।
1: तो मतलब तन्नू अपनी जिंदगी तो थोड़ी बहुत खुश भी यार, तन्नू थोड़ा बहुत न्यू भी लगा भी, थोड़ा गो ते अलग होंगी कहीं और जगह।
0: गाँव ते अलग होंगी, कहीं शहर मुंदी, रामदारी मुंदी, मेरा शरीर ठीक रहिंदा, इवें रोज की बीमार आ, काम लग रही आ, काम भी टली जानी नु सारा दिन रखा करना। यह बात है ना,
1: ठीक है बात चाची। तो जोन सी चाची और गो की गोमा औरता रह रही तो उन्हें क्या संदेश देना चाहगी, तो उन्हें क्या कहना चाहगी भी उन्हें अपने शरीर के बारे में भी देखना चाहिए, एक सारा दिन बस काम ही कर देना चाहिए, करते रहना चाहिए।
0: उन्हों तो अपना शरीर भी देखना चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, शहर में रहा इबम तो अनपढ़ती चल गोमा रहेगी, इबार तो पढ़ी लिखी शहर में रहना चाहिए ना, शहर में आरामदारी मिला, अपना शरीर सेहत ठीक रहा ना, ही दो ही रहा, अभी पूरा काम में लगे रहे सारा दिन सवेरी नाइट बस।
1: ठीक बात चाची। अरे चाची जिस तरह कई बार न्यू भी हो बंदे का मन नहीं लगता, जिस तरह तेरा मन ना लगा कई बार, घर में जी नहीं लगता, काम काम कर का सारा दिन वाह जा, तो फिर अपना तो मन लगाने वास्ता क्या करा भी, कोई जिस तरह कोई गाना सुना कोई योग करा, क्या करा फिर उस वास्ता।
0: बस मैं फिर टेलीविजन चला ली हुआ, टेलीविजन देखने लग जाऊँ बैठ कर, थोड़ा आराम मिल जा, जेल जेल जेल टेलीविजन देख ली हुआ।
1: ठीक बात चाची। टेलीविजन में क्या देखा, कोई गाने गुने सुना कोई नाटक नूटक देखा।
0: बस नाटक आवा, पहले तो गीत वाला नाटक आवा रहा, वो देखूंगी आधे घंटे का, तो 8 बजे थे, फिर 8:30 बजे ते नैन आला चला रहा, वो देखूंगी आधा घंटा, फिर आधा घंटा पीछे ते 3 घंटे ढाबे वाला चला रहा, वो देख रहा, फिर मेरा थोड़ा काम रह जा, बर्तन बुर्तन जे रह जा थोड़े बहुत, रात के ओए माज लूंगी, दूध जमा लूंगी, मैनू 10 बजे लेनी सी काम में, फिर इस करके बस फिर मैं 10 बजे पढ़ूंगी, फिर नींद आवा, सू सारा दिन हार जूँ, थक जूँ, फिर नींद ठीक आ जा, 4 बजे अपना फिर उठ जूँ।
1: और चाची जिस तरह तो सबेरी उठा 4 बजे, कोई फोन में अलार्म लूरम लावा का, अपने आप तेरी आंखों खुल
0: अपने
1: जा।
0: आप आंख खुला मेरी तो, टेम पर बस बंधुआ टेम हो रहा मेरे तो, आंख खुल जा बस, फिर मैं लाइट बाल के देख ली, 4 बज रही हूँ, मेरी आंख खुल गई, 4 बजे रहूँ।
1: ठीक बात चाची। तो चाची जिस तरह तन्ने बताया अभी तो टेलीविजन में नाटक नूटक देख ले अपना तेरा जी लग जा, तो इन नाटका में तन्नू क्या सीख मिला अभी तो, कुछ देख का तन्नू शिक्षा भी मिला कोई नाटका नु।
0: सीट से तो मिला, उन्हों देख रही है वो किस तरह कर रही है, लड़ाई झगड़ा भी पढ़ रहा है उन्होंने, प्यार प्रीत भी बहुत हो रहा उन्होंने, देश सीखने ने तो मिला उन्होंने देश का।
1: अच्छा ठीक बात चाची, बहुत जानकारी दे दी चाची तने इस बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहती हो तो?
0: बस मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तो नहीं कहूँ, बस सब पढ़े लिखे होने चाहिए, पहले तो माँ बाप पढ़ावा नहीं थे बच्चे काम पर लगाए लेटना थे, अपना छोटे छोटे न्याणे हो ते मारी उम्र में तो खेती बाड़ी में मैसा खोलनी, खेत में घास लियाना, इस काम में रखा दे लड़े का, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दे रहा थे अपने बच्चे का, ये तो 3 साल का बच्चा नहीं होता जब स्कूल में पाए देंगे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करा पढ़ावे अच्छे से अच्छे स्कूल में पावे, उन्होंने वही नौकर लड़ रहे सारे बच्चे, माने बच्चे अपने नौकर लगाई दिए पढ़ाई का, तो नहीं पढ़ावा ना अपने बच्चे, शुरू से बच्चे स्कूल में लाए दें अच्छे स्कूल में पढ़न लगे जावा।
1: तो मतलब तो यही कहना चाह भी जितने भी इस रेडियो के माध्यम से श्रोता सुन रहे हैं भी, आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है यार, इंसान नु पढ़ना चाहिए चाहे औरत है चाहे कोई आदमी है।
0: हाँ सब पढ़ना चाहिए सबनों, अब तो चाहे कोई बच्चा लड़की या लड़का, लड़की तो एक समान है, ये तो सबनों पढ़ावा, पहले तो लड़कियों ने कोई पढ़ावा नहीं है था, लड़के लड़कियों ने पढ़ाई ले चलाते, उनका ज्यादा प्यार करे चलाते, ये तो ऐसी लड़की ऐसी लड़का, अब तो लड़कियों ने और ज्यादा प्यार करा लड़कियों से भी, उन्होंने अच्छी स्कूल में पावे पढ़ावे, और आगे फिर नौकर लगावा, और पढ़ने में भी ध्यान करा, लड़के पढ़ते भी नहीं है, लड़कियां पढ़ने में बहुत चौकस हो ना, पढ़ाई लिखाई करा।
1: ठीक बात चाची।
2: यो था मारा आज का सफर, मारा कार्यक्रम आओ गाम चले। अच्छा इब मैं चलू हूँ, और अगली बार फिर थानू सुनाऊंगी कोई नवी बात। अगर थम चाहा बियो रेडियो दस्ता थारे गोमा भी आवा तो थम मैनु मैसेज या फोन कर सका, मारे स्टूडियो नंबर आ 7056413010, और दोबारे ते फिर बतैरी 7056413010।
3: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅਮ ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ FM 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰੇ ਸਾਥ ਥਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਖੀ ਨੇਹਾ ਦਾਕੜ। ਆਜ ਕਾ ਮਾਰਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਆ ਮਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਔਰ ਆਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾ, ਵੀ ਜੋਣ ਸੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿਤਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਖੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਮਾ ਸੁਆਂਗ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਆਂਗ ਕਰਕਾ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਾ ਤੋ ਸੁਆਂਗ ਆਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮਾ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਲਾਕਾਰੋ ਆ ਵੇ ਗਾਮ ਗਾਮ ਮਾ ਜਾ ਕਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦ ਸੰਚਾਰ ਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਰਾਤਾ ਤੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕਰਾਂਤੀ। ਆਜ ਹਮ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਸਵਾਂਗ ਕਲਾਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਨਕਾ ਨਾਮ ਆ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ, ਔਰ ਇਨਕੀ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ 24 ਸਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵਾ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਾਮਾਂ ਮਾ ਜਹਾਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਲਾਕਾਰ ਜੀ।
1: ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਜਾਤੀ ਰਾਜਭਾਟ ਬਰੂਪੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾ ਸਵਾਂਗ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ।
0: ਤੋ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਯੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰ ਵੀ ਜੋਣ ਸੇ ਸਵਾਂਗ ਹੈ ਵੇ ਕੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪ?
1: ਯੋ ਜੋ ਸਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾਓ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਚਲੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਯੋ। ਤੋ ਇਸ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇ ਰਜਵਾੜੇ, ਉਨਕੇ ਰਾਣੀਓ ਕਾ ਉਨਕੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੋ ਕਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਮਾਰੇ ਪੂਰਵਜ। तो बदले में वो हमें खान नू देते थे। राजा महाराजाओं के टाइम से चले हुए आ रही है यो।
0: और आप कहाँ ते आए हैं और इस काम ने करने का क्या मकसद है, अभी आप इसने क्यों कर रहे हैं सुवांग?
1: मैं राजस्थान के खाटू श्याम जी के पास का हूँ, और इसने करने का मकसद यो ही है कि आज के टाइम में जो हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है फोन के जरिए टेलीविजन के जरिए, तो इसने बचाने वास्ते कि भाई आजकल के नई जनरेशन ने यो पता होना चाहिए कि भाई ब्रूपिया कलाकार क्या था और वो अपना किस तरह वो काम किया करता था, क्या क्या भूमिकाएं निभाया करता था।
0: ठीक बात। हाँ, जिस तरह आज के टाइम में हमारी पुरानी परंपरा तो खोई गई, लेकिन फिर भी थम प्रदर्शन कर का लोग का सुनावा, क्या आपकी बात लोग ध्यान ते सुना और क्या आप देखा लोग?
1: जी बिल्कुल, अभी भी जो पुराने बंदे हैं वो तो आज भी इस कला का इज्जत करते हैं, भावना रखते हैं इन चीजों में। जो नई जनरेशन है वो समझने में अभी टाइम लगेगा उनको। बाकी यो है कि नई जनरेशन के लिए ही हम यो प्रोग्राम दिखाते हैं कि भाई नई जनरेशन भी इससे कुछ सीखे और इस कला नु समझे। बाकी पुराने जमाने वाले बंदे तो आज भी जान रहे इस कला के बारे में कि वो कला क्या थी और क्या है, इस करके आज भी यो प्रोग्राम दिखाते हैं गाँव गाँव में।
0: तो आप लोगों नु इस वांग के जरिए किस तरह शिक्षित करा है यो भी थोड़ा सा हमारे श्रोता नु बताओ।
1: जी बिल्कुल, यो जब भगवानों के जो गेटअप थे, जैसे शंकर भगवान हो गए, नारद मुनि हो गए, परशुराम हो गए, तो जितने भी भगवानों के प्रोग्राम थे, श्री कृष्ण भगवान हो गए, तो इनकी छवि हमने अपने ऊपर उतारी पहले कि भाई ये इस प्रकार के दिखते थे। इससे पहले लोगों अलग अलग अपनी भावना रखते थे भगवान के प्रति, पर एक ब्रूपिया कलाकार अपने शरीर पर 52 रूप धर के और अलग अलग भगवानों की छवियां दिखा के यो प्रस्तुत किया करता था कि भगवान ऐसे दिखते थे यार, यो उनकी बोलबाणी थी। तो एक ब्रूपिया कलाकार अपने शरीर पर 52 रूप धरता है, यो परंपरा है।
0: ठीक बात। और आप जिस तरह ये सुवांग करा, कहां कहां आप ये सुवांग कर कह रहे हैं, मतलब कितने जगह जाए आप?
1: जी और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, गुजरात, ये 8-9 राज्य हैं जहां इस कला को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें आज की नई जनरेशन के लिए जैसे बागड़ो, जिन, याकू, भील, जो बच्चे जिसमें भावना रखते हों या बच्चे जिस कला से खुश होते हों उस कला को दिखाने लग गए।
0: और आपने आज तक कितने गोवा में यहाँ पे जा लिए, जिस तरह आप इस गो मैरे, और कितने गो आपने कर दिए हैं?
1: जी मैं अपने नारायणगढ़, यमुनानगर और अम्बाड़ा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनमें सारों में जाता हूँ मैं और अपनी कला प्रदर्शित करता हूँ।
0: ठीक बात। और जिस तरह आप अपना ये प्रोग्राम दिखावा तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुआ है, लोग क्या कहा आपने देख कर जब आप इस वांग करा?
1: जो बंदे हैं नई जनरेशन के, कोई इस कला को समझने वाला होता है, कोई समझता भी नहीं है कि ये क्या है, क्या है, क्यों घूम रहा है, तो कई फालतू बात करने वाले भी हैं, तो कई इस कला की इज्जत करने वाले भी हैं, कदर करने वाले भी हैं, तो इस कला को समझते भी हैं, जो पुराने बंदे हैं या जो समझने वाले हैं इस कला को, वो अच्छी भावना रखते हैं। बाकी जो कोई नहीं समझता है वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाते रहता है।
0: ठीक बात। और आप यो सुवांग कद तक करांगे और क्या इच्छा है भी यो कद तक चलता रहेगा सुवांग? जिस तरह आप 24 साल के हो गए तो कितनी उम्र तक करना चाहेंगे भी, हाँ मैं कद तक करता रहूंगा यो काम?
1: बस यो ही है कि सारे ते यही अपील है कि भाई इस चीज को समझो, इस कला को समझो, जो आगे तक हम दिखाते रहे। आने वाला जमाना ऐसा नहीं रहा कि गांव गांव में हर प्रकार का बंदा नहीं जा सकता, तो इस चीज को थम समझोगे जब हम आते रहेंगे तो समझने वाले थम रह गए हो जनता माता, जो थम समझोगे तो हम आवेंगे, और जब थम थारे प्रति इस चीज की कदर हट जाएगी या थम समझना बंद कर दोगे तो हम भी मारा दाड़ी मजदूरी करके हमारी कला को भूल जाएंगे, या आने वाली जनरेशन यो याद भी नहीं रखेगी कि रुपया कलाकार कौन था, तो इस चीज ने बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हो जब तक थम समझ रहे हो इस चीज ने, जब तक तारे कला के प्रति प्रेम है जब तक दिखा रहे, जिस टाइम पे था रहे हो कला के प्रति प्रेम हट जाएगा उस टाइम पे बंद हो जाएगी।
0: ठीक बात। तो जिस तरह आप ये किरदार निभावा तो कोई किरदार मारे श्रोता नु बोल का भी दिखावांगे भी मैं इस तरह बोलू हूँ, कोई किरदार बोल का भी बतावांगे श्रोता नु?
1: जी बिल्कुल, श्रोता ने किरदार बोल के भी दिखावांगे और बन के भी दिखावांगे। जैसे भील का प्रोग्राम हो गया तो भील की बोली ये होती है कि वो आदिवासी जंगलों में रहता था भील, तो भील बोलता था कि भील भगत भगवान का प्यारा रहता है तान और मान से रोक के छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से। जैसे बागड़ों का हो गया, बागड़ों जिस टाइम पे अपना वो लोहे का सामान बनाते थे बागड़, जैसे चिमटा फूकनी वगैरह ये जो भी है कि लो चिमटा फूकनी झरना पलटा नागोरी नकचुट्टी, कोई भैंस की साकड़ बनवा लो, कोई कनस्तर का ढक लगवा लो, तो ऐसे करके अपने सामानों का विस्तार किया करते थे कि मैं ऐसे ऐसे सामान बनाती हूँ और ऐसे ऐसे मैं बेचती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, जो उनसे आपने बागड़ों का बताया तो बहुत ही बढ़िया लग्या। और इससे अलग भी कोई किरदार जो हमारे श्रोता आप सुना सका अपनी आवाज के जरिए तो वह भी सुना दो।
1: जी जैसे शंकर भगवान का हो गया कि जैसे बम लहरी जटा बिच गंग बहरी, ये शंकर भगवान का प्रोग्राम होता है। जैसे नारद मुनि का प्रोग्राम होता है, नारायण नारायण सटक नारायण गटक नारायण, नारद आए भाव से मांगे तीन रतन बहता पानी निर्मला भात बतीला होए, नारद जी तो रमते भले दाग लगे ना कोई। जैसे श्री कृष्ण भगवान का हो गया कि वारे काना नंद का के जन्म चरावे ढोर, रीत की प्रीत जानी नहीं तू खागो मक्खन चोर। ये श्री कृष्ण भगवान जी के बोल थे, जो कृष्ण भगवान मक्खन चोर के खाया करते थे वृंदावन में, जब श्री कृष्ण भगवान गाय चराया करते थे कि आज श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजेगी और वहीं पर गाय चरेंगी वृंदावन में, ये कृष्ण भगवान की हो गई। ऐसे करके जितने भी किरदार होते हैं उन्हें पहले भरूपिया अपने शरीर में उतार लेता है कि मैं घट में रमा लेता है उस चीजों को कि मैं कैसे तो इस प्रोग्राम को दिखाऊं और कौन सी मेरे से भूल हो जाए या चूक हो जाए तो उसको मैं सुधारूं, तो सब चीजों को सुधार के रुपया कलाकार अपने शरीर के ऊपर वो स्वांग करता है, जो भी कोई कसर रह जाती है उसको पूरी करके और वो कला बनाई जाती है।
0: बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया जानकारी दे दी। और जिस तरह आपने बताया है भी रूपिया हो 52 रूप हो इसके, और ये अपने 52 रूपों ते ही लोगों का मनोरंजन भी करा और उन्होंने संदेश भी दे, तो आज के टाइम में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रेडियो के माध्यम से? बीमारी परंपरा या खत्म नहीं होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजस्थान के 3-4 जिलों में ये जो हमारे बाट समाज है जो फैली हुई है, ये सिर्फ 3-4 जिलों में ही रह के समिट गई, बाकी इस कला को प्रदर्शित करने वाला और कोई राज्य नहीं है और कोई जाति नहीं है। एक ये रूपये कलाकार राजस्थान के जो 3-4 जिलों में रह गए हैं, तो वो 700 से 800 बंदे हैं जो इस कला को प्रदर्शित करते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो इनकी इज्जत करो, इनकी कला को सम्मान दो, ताकि आगे आगे अपने कला को प्रदर्शित करें, मनोरंजन करें थारे न्याणे बच्चों का, और इस कला का संशोधन से थमने कुछ अच्छी शिक्षा दे सके, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कह सके। बाकी यो थारे ऊपर है, नई जनता जनरेशन के ऊपर है कि इस चीज को थम समझोगे जब यो कलाकार बंदे आते रहेंगे, जब थम नहीं समझोगे तो इस चीज ने हमारी यो धीरे धीरे धीरे धीरे वो कला समाप्त हो जाएगी। तो थारे से यो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस चीज ने, इस कला ने समझो और किसी कलाकार की इज्जत करो, बरूपे कलाकार की, जो राजा महाराजाओं के टाइम से चली हुई आ रही है प्रथा, उसने आगे चलाते रहो, यो थारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थारे से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आगे तुम इस चीज की कदर करो, कला का सम्मान करो इसका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सुवांग कलाकार का, बहुत जिसने हमारे श्रोता ते इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहो FM रेडियो 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर मारी संस्कृति। हम सुन रहे थे मारा कार्यक्रम मारी संस्कृति और हम अगला कार्यक्रम लेकर फिर थारे ते रूबरू होंगे। तब तक सुनते रहो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। जे थारे पास भी कोई जानकारी है तो थम मारे स्टूडियो नंबर पर फोन या मैसेज करके मनु बता सका। मारा नंबर आ 705641301 705641301 जय हिंद जय भारत।
2: नब्बे अशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगा हर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। 20 सेंटीमीटर होने पर 30 दिन बाद ऊपरी कलियों को तोड़ दें, किसान अगस्त में करें गेंदे की रोपाई, नवरात्र और दिवाली पर मिल सकता है अच्छा भाव। अगस्त का महीना गेंदे की खेती शुरू करने के लिए अच्छा समय है। इस महीने लगाई गई पौध से तैयार फूल नवरात्र, दशहरा, दिवाली और शादियों के सीजन अक्टूबर से बाजार में पहुंचते हैं। इस दौरान मंडियों में गेंदे के फूलों की भारी मांग रहती है, जिससे किसानों को अच्छा भाव मिलता है। करनाल के जिला उद्यान अधिकारी DHO डॉक्टर कमल सैनी के अनुसार, यदि किसान पारंपरिक तरीकों की जगह सही तकनीकी विधियों और उन्नत किस्मों का चयन करें तो गेंदे की खेती से कम लागत में कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। 30 से 35 दिन बाद जब पौधा 20-25 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसकी ऊपरी कली को ऊपर से 2-3 सेंटीमीटर तोड़ देना चाहिए। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को पिंचिंग कहते हैं। इससे पौधे की नीचे से नई शाखाएं निकलती हैं, जिससे झाड़ घना बनता है और फूलों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदों की अधिक मांग। अच्छी पैदावार और बड़े आकार के फूलों के लिए सही किस्म चुनना बेहद जरूरी है। अफ्रीकन गेंदा, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, इंका येलो और मैक्सी गोल्ड, इनके फूल बड़े और वजनदार होते हैं। माला बनाने और सजावट के लिए मंडियों में इनकी सबसे ज्यादा मांग रहती है। फ्रेंच गेंदा, पूसा अर्पिता और रेड ब्रोकेड, इनके पौधे मध्यम आकार के होते हैं और इनमें फूलों की संख्या काफी अधिक निकलती है। 6 ट्रॉली गोबर की खाद डालें, शाम को करें रोपाई। गेंदे के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयोगी रहती है। खेत में बारिश का पानी नहीं रुकना चाहिए। 2-3 बार अच्छी जुताई करके प्रति एकड़ 6-8 ट्रॉली गोबर की खाद या 2 टन केचुआ खाद अच्छी तरह मिला दें। नर्सरी में तैयार 25-30 दिन की पौध को अगस्त में शाम के समय खेत में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 2 फीट यानी 7 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर रखें। प्रति एकड़ 8,000 रुपए मिलता है अनुदान। बारिश के मौसम में फुफंद और जड़ गलने से बचाव के लिए खेत से पानी निकासी की नालियां खुली रखें। पत्तों पर धब्बे दिखने पर मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी और रस चूसने वाले बारीक कीड़ों से बचाव के लिए नीम के तेल का छिड़काव करें। पौध लगाने के 60-70 दिन बाद गेंदे की तुड़ाई शुरू हो जाती है। सही देखरेख से प्रति एकड़ 80-100 क्विंटल तक फूलों की पैदावार आसानी से मिल जाती है। इससे त्योहारी मांग के समय किसान भाई शानदार कमाई कर सकते हैं। गेंदे की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग 8,000 एकड़ के हिसाब से सब्सिडी भी दे रहा है। एक किसान इस अनुदान राशि का अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ ले सकता है। रोग कीट रोधी सब्जियों की किस्में तैयार करेगा महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय। प्याज, लहसुन, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों पर शोध शुरू। गर्मी और लवणीय मिट्टी में भी बेहतर उत्पादन देगी नई किस्में। बदलते मौसम, बढ़ती गर्मी और फसलों में रोग कीट के बढ़ते प्रकोप के बीच किसानों को ऐसी सब्जियों की जरूरत है जो कम लागत में बेहतर उत्पादन दे सके। इसे देखते हुए महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय ने अगले 5 वर्षों में सब्जियों की नई किस्में विकसित कर किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ऐसी किस्मों पर काम कर रहे हैं जिनमें रोग और कीट से प्राकृतिक रूप से मुकाबला करने की क्षमता हो। इससे फसलों पर बार बार कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटने और खेती की लागत कम होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय में फिलहाल प्याज, लहसुन, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों की नई किस्मों को लेकर अनुसंधान शुरू किया गया है।
वैज्ञानिकों का फोकस केवल अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय जलवायु और किसानों की परिस्थितियों के अनुरूप गुण विकसित करने पर रहेगा। खासतौर पर गर्मी सहन करने वाली किस्मों को तैयार करने पर काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ऐसी किस्में विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो लवणता को अधिक सहन कर सके। नई किस्म तैयार करने में सामान्यतः 3 से 4 साल लगते हैं। इसके बाद परीक्षण और किसानों के स्तर पर मूल्यांकन के चरण पूरे होने पर इन्हें व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। नई किस्म बाजार तक पहुंचने में लगते हैं कई चरण। नई किस्म विकसित करने के बाद सीधे किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता। पहले शोध चरण और परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद उसके प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। विश्वविद्यालय के अनुसार कई नई किस्मों को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसलिए किसानों को नई किस्मों के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ऐसी सब्जियों की किस्मों पर काम कर रहे हैं जो रोग कीट प्रतिरोधी होने के साथ गर्मी और लवणता जैसी परिस्थितियों को सहन कर सके। प्याज, लहसुन, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों पर अनुसंधान शुरू हो चुका है। अगले 5 सालों में नई किस्मों के बीज उपलब्ध हो सकेंगे। ये कहा है डॉक्टर एस के मल्होत्रा, कुलपति महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल। धान की फसल में तना छेदक रोग के लक्षण 50% तक कर सकता है उत्पादन को प्रभावित। प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन टेप या लाइट टेप लगाएं, छिड़काव करें। धान की फसल पर तना छेदक कीट रोग का प्रभाव देखा जा रहा है। समय रहते ध्यान न देने पर उत्पादन में 30 से 50% तक की भारी गिरावट आ सकती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश ने बताया कि इस रोग में पौधे की बीच की रो यानी पत्ती सूखने लगती है, बालियां सफेद पड़ जाती हैं और उनमें दाना नहीं बनता, तने के अंदर छेद हो जाते हैं। किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीमों ने कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया। करीब 20% फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे बचाव के लिए खेत में प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन टेप या लाइट टेप लगाएं। प्रति एकड़ 20,000 से 25,000 ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोग्रामा कार्ड लगाएं। यह कीट के अंडों को नष्ट कर देता है। कीट का प्रकोप दिखने पर फ्रीनोलिल 0.3% ZR 8 से 10 किलो प्रति एकड़ में बालू में मिलाकर खेत में डालें। इसके अलावा क्रोलो टर्निल प्रोयल 18.5% SC 60 से 80 मिलीलीटर को 150 से 200 लीटर पानी में घोल प्रति एकड़ छिड़काव करें। जमीन में दरार नहीं आने दें। इस रोग से बचाव के लिए सिंचाई का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। फसल में केवल उतना ही पानी रहे जिससे जमीन में दरार ना आए। खेत में लगातार पानी ना भरने दें। 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी सुखाकर दोबारा भरें। इससे कीट का जीवन चक्र टूट जाता है। साथ ही दवा का छिड़काव हमेशा शाम के समय करें और अनुशंसित मात्रा से अधिक केमिकल का उपयोग ना करें ताकि मित्र कीट सुरक्षित रहें।

ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

वास्ते हंसने के वास्ते न रोना तू मेरी नीता, ओ तुझको घुमाऊंगा दुनिया दिखाऊंगा, न कर झगड़ा मेरी रीता।

0: थोड़ी जरा हंस दे तू, हंस दे
1: तू। तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: जी कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन दो।
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार मेनू 90.0 मे।

सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।

0: हसरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल सन 1922 को हुआ था। हसरत जयपुरी, जिनका नाम इकबाल हुसैन था। हसरत एक शायर थे, हिंदी उर्दू जुबानों में लिखा करते थे। वे हिंदी फिल्मों में एक मशहूर फिल्म गीतकार भी साबित हुए।
1: कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से।
0: सन 1967 और सन 1972 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। हसरत सन 1940 में जयपुर से मुंबई आए।

0: फिल्म के लिए मौसीकार शंकर जयकिशन से मिलवाया और बरसात फिल्म के लिए गाने लिखने की गुजारिश की। पहला गीत जिया बेकरार है और दूसरा एक दो गाने की सूरत में छूट गए बालों। फिर क्या था, हसरत जयपुरी की किस्मत जाग गई। फिल्म बरसात, श्री 420, अंदाज, ससुराल, सेहरा, गीत गाया पत्थरों ने, जंगली, पगला कहीं का, आरजू, लवन, टोकियो, भूत बंगला, सांझ और सवेरा, तीसरी कसम, राम तेरी गंगा मैली, लाल पत्थर, राजकुमार, संगम।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गा...

हजरत जयपुरी 17 सितंबर सन 1999 को इस दुनियाई फानी से कूच कर गए। बेशक मौत एक सच्चाई है, पर यह भी अपनी जगह सही है। हसरत जैसे गीतकार शायर कभी मरते नहीं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
3: गणपति बप्पा मोरिया।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विद अस्था। हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम किन्नी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 14। आज का शीर्षक है परिवार के मायने। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, निर्देशन एवं प्रस्तुत करता RJ किरने।

सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर, हम सफर जिंदगी का। आज का टॉपिक है परिवार माने क्या। कई बार हमारे आसपास के रिश्ते बीमारी की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां लक्षण कम दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ मर चुका होता है। आपसी जुड़ाव भावनात्मक या केवल रस्मी या जानने के लिए परिवार की भावनात्मक समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा क्या है और क्या करें? रिश्ते भी एक सिस्टम की तरह होते हैं जिनमें संवाद, सहानुभूति, आदान प्रदान, स्पेस और इज्जत जैसे भाग होते हैं। इनका समय समय पर ऑडिट होना जरूरी है, वरना रिश्ता सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता है। फैमिली ऑडिट चेकलिस्ट। क्या आप बिना डरे अपने दिल की बात घर में किसी से कह सकते हैं? क्या हर सदस्य को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता मिलती है? क्या घर में बातचीत और संवाद हमेशा खुले और ईमानदार रहते हैं और चुप्पी के बजाय विचारों का आदान प्रदान सामान्य होता है? जब आप घर आते हैं तो क्या एक अपनापन महसूस होता है या घर लौटने का सुकून लगता है? क्या आप सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही इस परिवार का हिस्सा है या आपके कठिन वक्त में भी कोई आपका दर्द समझने वाला है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों बुजुर्गों की मौजूदा भावनात्मक जरूरतें क्या है? क्या थैंक यू और सॉरी जैसे शब्द आपके परिवार की बातचीत में है? क्या आपके घर में सिर्फ जरूरी और कामकाजी बातें होती है या इससे परे भी आप एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं? किसी सदस्य के रोने या परेशान होने पर कोई पूछता है कि क्या हुआ? क्या परिवार में किसी के सामने दिल खोल कर रो भी पाते हैं? अगर इनमें से 5 या उससे अधिक सवालों का जवाब ना में है तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने रिश्तों की गहराई और आपसी समझ और संतुलन पर विचार करने की जरूरत है। लाल झंडिया। जब रिश्ते सिर्फ चल रहे होते हैं, खुलकर बात नहीं होती, जब आप मन की बात कहने से डरे या लगे कि आपको समझा नहीं जाएगा, तो ये रिश्ते से दूरी का संकेत हो सकता है। सब साथ होकर भी मोबाइल पर हो, डिजिटल दूरी धीरे धीरे रिश्तों को खाली कर सकती है। बातचीत सीमित हो गई है, कब आओगे, बिजली का बिल भर दिया जैसे बातें तो होती है लेकिन दिल की बातें, हंसी मजाक और साथ बिताया समय कम होता जा रहा है। साथ होते हुए भी अकेलेपन लगे, ये गंभीर संकेत हो सकता है। भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं बची, ना आप पूछते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, ना उन्हें फर्क पड़ता है आप क्या महसूस कर रहे हैं। तकरार या फिर खामोशी। जब संवाद का स्थान तकरार या चुप्पी ले ले तो धीरे धीरे रिश्ता थकने लगता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव पर एक दूसरे से दूरी। दोस्तों के साथ चैट करना तो चलता रहता है लेकिन घर के लोगों के साथ बात करने की फुर्सत नहीं होती, ये भावनात्मक प्राथमिकताओं का असंतुलन है। सिर्फ औपचारिक रिश्ते। अगर रिश्ते केवल जन्मदिन, सालगिरह और अन्य खास दिनों पर बधाई देने तक सीमित है तो ये दर्शाता है कि रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो चुका है। सुधार की ओर इशारा। माफ करने की प्रवृत्ति। जब कोई गलती हो तो सामने वाला कहे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तो ये रिश्ते को ठीक होने का संकेत है। मुश्किल समय में साथ देना। असली रिश्ता तब दिखता है जब कोई बीमार हो, तनाव में हो या टूट रहा हो और परिवार बिना कहे मौजूद हो। सब एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मजबूत संबंध वाले लोग खुश और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। जब कोई परवाह करने वाला व्यक्ति आपके प्रति स्नेह दिखाता है तो आपके शरीर में अच्छा महसूस करने वाले रसायन निकलते हैं। इससे आपका तनाव कम होता है, आपका मूड अच्छा होता है। आपके साथ एक देखभाल करने वाला वयस्क का होना लचीलापन पैदा करता है। जब आपके पास सहायता या सलाह के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति होता है तो आपके चुनौतीपूर्ण समय से उभरने की संभावना अधिक होती है। देखभाल करने वालों के साथ घनिष्ठ संबंध आपको स्वयं के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने में मदद करते हैं। पारिवारिक कर्तव्य और परंपराएं आपको ये समझने में मदद करती है कि आप कौन हैं, आपको किस चीज की परवाह है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अब्र की सिहाई से चांद ने जब देखा था, मसरत से सितारों ने तब ये सोचा था, ये घनेरे बादल हैं, कभी तो मिट जाएंगे, हमारी भी तकदीर बदल जाएगी, कभी हम भी जगमगाएंगे, पुर अमन सफर जारी था, दिल में गुमा कुछ और था, ईमान उनका इस कदर बह जाएगा, दिल को कब ये एहसास था, अभी अभी तो नजरें मिली थी उनसे, अभी तो समझे थे दिल की बात, आने लगे थे यूं ही करीब, आने लगे थे यूं ही करीब, पर फासलों ने फिर से रास्ते रोके, फासलों ने फिर से रास्ते रोके, अब्र की सिहाई से चांद ने जब देखा था, मसरत से सितारों ने तब ये सोचा था।

ख्वाबों की सरहदें नहीं होती। रोज चिलक जाता हूं मैं उस पर अपने यार से मिलने, बातें करता हूं, हां देर शाम तक बातें करता हूं, पुष्पहार पहनाता हूं, फूलों की बारिश मौसम खिजां अक्सर मेरे गीतों को गुनगुनाना, अभी भी तुम्हारी फितरत में शामिल है। अपने यार को मीना बाजार की सैर भी कराता हूं, तुम्हारी नाजुक कलाइयों में कंगन पहनाता हूं और इन बादामी आंखों में कचरा लगाता हूं। बंद आंखों के ख्वाबों की सरहदें नहीं होती। रोज चला जाता हूं मैं उस पर अपने यार से मिलने, तुम हुस्न की हो मिसाल, हो पूनम का चांद, जिंदगियों की हो सहर, हो ढलती शामों की मखमली नींद। ये किस

परियां फैलाती हैं मन का आंचल, भर देती हैं खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती हैं गगन के उस पार अपनी मुस्कुराती दुनिया में, जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करते हैं और जिस्म प्यार का इजहार।

कहाँ हैं दूर के मुसाफिर, चलते हैं अपनी परछाई के हमरा, अपने साए के संग संग, और खोजते हैं अपनी खोई हुई पहचान को। ये दुनिया जंगल की तरह है, जहां भीड़ है अनसुनी रूहों की, अजली लाशों की। इस जारी सफर में हम अपने रिश्तों की अहमियत को भूल चुके हैं और भूलते जा रहे हैं इंसानियत का सबक।

दोस्तों, आज की ये महफिल बस यहीं तक। चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। हम हर मर्तबा बात करते हैं किसी भी एक गोल्डन एरा मूवी के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1971 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जो कि गुलशन नंदा जी की एक नावल पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, आशा पारेख और उस समय के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा। और कहा जाता है इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन के रूप में हिंदी सिनेमा में उभरे थे और ये फिल्म थी कटी पतंग। इस फिल्म के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के किस्से जारी रहेंगे, फिलहाल सुनाता हूँ एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ में।

गीत तो था बहुत सुहाना और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की, जिसे रिलीज हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब ने इस फिल्म की लीड अदाकारा के रूप में आशा पारेख जी को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी पहली पसंद आशा पारेख नहीं थी और इससे पहले राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख की बहारों के सपने फिल्म आई थी जो कि इतनी नहीं चल पाई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आशा पारेख जी के पास यह रोल कैसे आया और कैसे उन्होंने इसे बाखूबी निभाया, ये भी आपको बताएंगे। इस किस्से को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। उससे पहले सुनाता हूँ आपको मोहब्बत भरा गीत।

उम्मीद करता हूँ कि यह गीत आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं हमारे फिल्मी किस्से पर। हम बात कर रहे थे किस तरह यह रोल आशा पारेख जी को मिला। कहा जाता है उस समय शक्ति सामंत जी की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी और सबसे पहले यह रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वह माँ बनने वाली थी जिस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। यह फिल्म उस समय के संवेदनशील विषय पर बनी थी जो था विधवा विवाह, और जब आशा पारेख जी ने यह रोल सुना तो इस वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी, और इस तरह हमें मिली कटी पतंग की मधु। और भी किस्से बाकी हैं, उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गीत और लौटकर बताएंगे इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का किस्सा।

गाना हुआ खत्म, अब आप लौट आइए उन फिल्मी किस्सों की तरफ। अगला किस्सा है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यह फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। इस फिल्म का ज्यादातर दारोमदार आशा पारेख जी पर था, लेकिन फिल्म के सारे हिट गाने राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए थे। परंतु फिल्म का शीर्षक गीत जो कि लता जी ने गाया है, वह आशा जी पर फिल्माया गया था। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में हुक सी उठती है। आइए अब आपको यह गीत भी सुना देता हूँ।

अब हम लौट आए हैं कटी पतंग से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। इस फिल्म के ना केवल गाने मशहूर हुए बल्कि इस फिल्म ने उस सदी के खलनायक और खलनायिका को भी पहचान दी और लोगों के बीच मशहूर भी किया, जिसके बाद उन्होंने खलनायक के रूप में कई किरदार निभाए। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने ने बिंदु जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की आइटम गर्ल बना दिया। अब सुनाने जा रहा हूँ आपको वही गाना आशा भोसले जी की आवाज में।

पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

शहनाई बजती रही। मैं थी, तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर फिल्मी किस्से एपिसोड 2। उम्मीद करता हूँ किस्से सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और इस फिल्म के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर। आपको सुनाते हैं एक और किस्सा जो कि जुड़ा है सचिन देव बर्मन जी से। कहा जाता है राजेश खन्ना जी की इससे पहले बनी फिल्म आराधना में बतौर संगीतकार सचिन देव बर्मन ने काम किया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने उस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग करवाई। बाद में कटी पतंग में जब आरडी बर्मन को संगीत निर्देशन पर प्रयोग करने का खुला अवसर मिला तो उन्होंने कमाल संगीत बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। अब इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ एक और गीत के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले अंक में आप कौन सी फिल्म के किस्से सुनना पसंद करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। आपसे जल्द मुलाकात होगी और भी फिल्मी किस्सों के साथ। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, लेखक एवं निर्देशन सेजल पुंज। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विद अस्था की

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी अंक 4। आज की मेहमान है कवित्री सविना वर्मा। प्रस्तुत करेंगे भरत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत करता हूं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। आज आपका ये रेडियो दोस्त भरत सोपोरी लेके आया है शेर व शायरी की महफिल, कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 4 में। उम्मीद है कि आज के आमंत्रित मेहमान आपके लिए जो कविता पाठ करेंगे उससे आप अपने जीवन के साथ जुड़ा पाएंगे, क्योंकि संघर्ष से तब के जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो अपने कविताओं से और अपने काम से आपको सराबोर करते हैं। आइए आपके साथ रूबरू करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान और स्वागत करते हैं इन पंक्तियों से। स्वागत करता हूं अतिथि देवो बाबा, कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। आज के आमंत्रित मेहमान हैं सविना वर्मा। सवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
1: भारत जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, सभी सुनने वाले को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 4 लाइनों से अपना आगाज करूँगी। मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, उदासी मेरी बस सहेली रही है, यूं तो बहुत दोस्त थे साथ अपने, मगर ये सभी तो अकेली रही है, मगर ये सभी तो अकेली रही है।
0: क्या बात। हम सवि जी और हमारी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई है। कृपया आप अपने बारे में एक मुख्तसर सा परिचय दें ताकि

0: जरूर पिताजी, मेरे पूरे हो गए थे, लेकिन परेशानियां बहुत ज्यादा हमारी माँ ने हम तक पहुंचने नहीं दी। उनके बारे में यही मैं आज भी सोचती हूँ कि वो उन्होंने कैसे किया होगा। तो परेशानियां बहुत ज्यादा हम तक नहीं पहुंचने दी, हालांकि उन्होंने, अब सोचती मैं, बहुत ज्यादा उन्होंने परेशानियां देखी होंगी, देखी। आज मुझे जब याद आता है उनके बारे में तो सोचती हूँ मैं कि बहुत परेशानियां उन्होंने झेली, हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: सवि जी, आपका जीवन कैसा रहा है जब आप किशोर अवस्था में थे? क्या शेरो शायरी का माहौल था घर में?
0: जी, मेरे भाई उस वक्त, हालांकि वो भी बहुत छोटे थे, वो लिखा करते थे,
1: जी
0: गाया करते थे।
1: जी
0: अपनी पार्टी थी उनकी, जागरण पार्टी थी उनकी, एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी, जगराते किया करते थे उस वक्त वो। और बहुत ही छोटी उम्र में अंबाला में भी उन्होंने प्रोग्राम किया काका बल्ली के नाम से।
1: अच्छा
0: हाँ जी, वैसे बलराज बल्ली नाम है उनका, वैसे पहले गुरु मेरे वही है।
1: जी
0: खुद बहुत लिखा करते थे, बहुत अच्छा गाया करते थे। एक फिल्म आई थी दारा सिंह की, भक्ति में शक्ति,
1: जी
0: उसमें उन्होंने काम भी किया, कई फिल्मी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया। तो बहुत सारे नाटकों में काम किया चंडीगढ़ में उन्होंने,
1: अच्छा
0: तो शायद मैं उनको देखती थी और उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी।
1: जी
0: लेकिन ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इजाजत नहीं थी कुछ भी करने की। हम स्टेज शो देखा करते थे, स्टेज पे जाया करते थे, गाने सुना करते थे, प्रोग्राम्स देखा करते थे, लेकिन उसका हिस्सा बनने की इजाजत हमें नहीं थी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा।
1: तो घर में इस तरीके का माहौल था जहां संगीत भी चलता था, सब कुछ चलता था,
0: हाँ जी,
1: तो ऐसा क्या कारण था कि जो आप नहीं उसका हिस्सा बन पाए?
0: बस उस वक्त लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था।
1: अच्छा, ऐसा माना जाता था कि शायद ये लड़कियों के लिए
0: नहीं है।
1: सही नहीं है।
0: हाँ जी, मैं लिखा भी करती थी तो बस छुप छुप के लिखा करती थी, लिख के कहीं छुपा दिया, कभी वो मिला ही नहीं कहाँ गया, कभी फाड़ दिया कुछ। वो बहुत छोटी उम्र होती है और कुछ भाव मन के उमड़ घुमड़ के कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, खासकर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते,
1: जी,
0: जो कि आजकल बहुत आसान हो गया है, बच्चे सब कुछ अपने माता पिता को
1: शेयर करते
0: इजिली
1: हैं।
0: बता देते हैं।
1: जी
0: उस वक्त नहीं था ऐसा माहौल, तो शायद मैं सोचती थी कि जो मैंने लिखा है वो मेरे भाई को पसंद नहीं आएगा, मेरी माँ को पसंद नहीं आएगा, मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा। तो मैं छुप छुप के लिखा करती थी और कहीं छुपा दिया करती थी। कई बारी कोई पूछता था क्या लिखती है तो मैं फटाफट फाड़ दिया करती थी उसे,
1: ताकि जो आपने लिखा है वो
0: कोई और ना पढ़ ले।
1: वो और ना पढ़ ले।
0: हाँ जी, तो कई बार मैं फाड़ दिया करती थी, कभी छुपा के रख दिया, कुछ डायरियां गुम भी गई इसी वजह से। तो बस ये बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं दिखा नहीं सकती थी वो किसी को। हालांकि मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, काफी अभी कुछ ही समय पहले मेरे भाई साहब का इंतकाल हो गया, उससे कुछ समय पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम शादी से पहले कुछ लिखा करती थी।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो क्या लिखती थी? तो मैंने कहा भाई तुम लिखने नहीं दिया करते थे, क्या आप सुनोगे? इस वक्त सुनोगे? अब मैं भी माँ बन चुकी
1: जो
0: हूँ,
1: आपने तब लिखा है।
0: जब तब लिखा था।
1: ओके
0: हाँ जी, तो उसने कहा, पता नहीं किस मूड में था वो, तो उसने बोला हाँ मैं सुनूंगा, कुछ सुना मुझे।
1: ठीक है
0: और बड़े ही उस वक्त मुझे गौरव फील होता है इस वक्त, वो मेरा क्योंकि पहला गुरु वही था।
1: जी।
0: तो जब मैंने उसे अपना सुनाया, लिखा हुआ अपनी कुछ गजलें सुनाई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अभी कहते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि वो मेरे पैर पकड़ के बहुत रोया। हालांकि मैं उससे बहुत छोटी हूँ, मैं उससे कम से कम 7 साल छोटी हूँ। वो मेरे पांव पकड़ के इतना रोया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तेरा लिखा हुआ उस वक्त पढ़ा नहीं, क्योंकि वो गजलें गाया करता था, लिख के खुद भी गजलें गाया करता था। वो कहने लगा कि आज उसने गाना वाना छोड़ दिया था, तो उसने कहा काश मैं ये गजलें तेरी पढ़ लेता तो मैं गाता इसको, तो तू और मैं कहाँ तक पहुंच जाते। तो उस दिन बहुत रोया, बहुत रोया। तो मुझे लगा मेरा पहला अवार्ड तो मुझे यही मिल।
1: जो सबसे बड़ा
0: हाँ जी,
1: इनाम है
0: जो उन्होंने स्वीकार कर लिया इस चीज
1: जी।
0: को, तो मुझे ये लगा कि सबसे बड़ा इनाम मुझे तो ये मिल गया।
1: सभी जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कवि कवित्रियों को मैं जानता हूं, और जो आपका जीवन का सफर है वो सबसे अलग रहा है। अलग इसलिए रहा है कि जब हमारे पास कोई क्षमता होती है, कोई कैपेबिलिटी होती है,
0: जी
1: कोई कला हम में होती है, तो पेरेंट्स या जो परिवार के सदस्य है वो उसको प्रोत्साहन देते हैं।
0: जी
1: पर आपकी जो जिंदगी का सफर है कि आप कहते हैं कि आपने जो लिखा आपने फिर फाड़ दिया उसको ताकि कोई उसको पढ़े ना,
0: हाँ जी
1: तो और कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद आपके जो भाई साहब

0: है, उनको ये महसूस हुआ कि शायद हमने कोई गलती करी है कि हमने सवि जी को मौका नहीं दिया है
1: हाँ जी,
0: लिखने का या बोलने का या खुल के सामने आने का। खैर ये तो समय समय की बात होती है। आज आपका एक जाना पहचाना नाम है और आज आप लिखती हैं। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप कोई ऐसी कविता सुनाएं जो आपके शुरुआती दिनों की हो या जो आपने भाई साहब को सुनाई हो।
1: जी, जो भाई साहब को सुनाई थी वो शायद ना सुना पाऊं मैं
0: जी।
1: मैं आपको ऐसे ही
0: जी
1: कुछ कविता पढ़ के सुनाती हूँ।
0: जी जी।
1: एक सीप कोई समंदर का, एक फूल किसी मंदिर का, एक सितारा उस आसमान का, एक नजारा इस जहान का, एक झलक तेरे हुस्न की, एक महक मेरे इश्क की, एक इशारा तेरी नजरों का, एक सहारा मेरे अधरों का, एक तपिश तेरी उंगलियों की, एक कसक मेरी हथेलियों की, एक सच तेरी हां का, एक झूठ मेरी ना का, एक सुकून तेरी बाहों का, एक जुनून मेरी चाहों का, एक सपना तुझसे मिलने का, एक सपना संग चलने का, एक रंग तेरी होली का, एक तंज मेरी बोली का, एक वक्त तेरे आने का, एक वक्त तेरे जाने का, एक पल में जान आती है, एक पल में जान जाती है, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक कल था एक आज है, एक अफसाना एक राज है, एक पहेली है कवि की, एक सहेली है सवि की, एक तू एक तेरी तमन्ना, एक तेरा कहना एक मेरा सुनना,
0: क्या
1: एक तेरा कहना एक मेरा सुनना। शुक्रिया।
0: ये शुरुआती दिनों में आपने लिखा है और एक शायर के तौर पर आप मुझे ये बताइए कि जब आप कुछ लिख के उसको फाड़ देते थे तो क्या आपको अच्छा लगता था या बुरा लगता था?
1: नहीं, बहुत दुख हुआ करता था कि ये सच्चे जज्बात होते हैं उस वक्त
0: जी।
1: आज हम कुछ बहर में लिखते हैं
0: जी,
1: कुछ किसी को पढ़ के लिखते हैं, किसी को सुन के लिखते हैं, लेकिन वो खाली सपने जज्बात हुआ करते थे, वो किसी और उसमें कुछ मिलावट नहीं हुआ करती थी, कोई बहर नहीं हुआ करती थी, सिर्फ भाव हुआ करते थे। वो मुझे लगता है कि बहुत दुख भी हुआ था और आज भी बहुत दुख होता है सोच के कि मैंने क्या लिखा था।
0: और क्योंकि वो याद भी शायद नहीं होगा,
1: नहीं याद होते वो।
0: मुझे इसके साथ जुड़ा हुआ एक बात बताइए, एक कवि है या कवित्री है, उसको से रात वो सो रहे हैं और कुछ ख्याल आया, जग गए और कुछ ख्याल आया लिखने का, क्या उस कवि या कवित्री को सुबह तक इंतजार करना चाहिए या उसी समय उठ के वो लिखना चाहिए?
1: नहीं, इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं तो कभी कभी झाड़ू लगा रही होती थी कभी बर्तन मांज रही होती थी, कभी प्रेस कर रही होती थी
0: जी,
1: वो छोड़ के मुझे लिखना पड़ता था
0: क्योंकि वो ख्याल दोबारा
1: नहीं आता,
0: नहीं आएगा ना रुकेगा वो।
1: तो डांट भी पड़ती थी कि ये काम बीच में, झाड़ू अब बीच में पड़ी है, ये प्रेस कपड़ा जल गया है, तो वो छोड़ के फटाफट लिखने शुरू कर देती थी कि मैं फटाफट लिख लूं। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ।
0: क्या दिल में खुशी होती थी कि चलो अगर डांट भी पड़ गई बट जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया?
1: बिल्कुल, बहुत खुशी होती थी कि जो जज्बात दिल में आए वो कह डाले, कोई पढ़े कोई ना पढ़े, लेकिन वो मेरे पास कुछ तो महफूज है।
0: श्रोताओं को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के सफर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कभी भी हमारी जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिंदगी में। और हमें आज सवि जी से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी बातों से मुझे भी मार्गदर्शन हो रहा है और मुझे उम्मीद है जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी ये मार्गदर्शन दिख रहा होगा कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, पर जो मुश्किलों में अपनी जिंदगी की राह बनाते हैं वो शायद जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहते हैं। सवि जी से पूछते हैं हम शेर व शायरी की ओर, कब से आपने रुख किया और क्या कोई कविता या कोई शेर जो सबसे पहले आपके हिसाब से हो क्या आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
1: जी, शायद मैं 15 या 16 बरस की होंगी तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ लिख भी सकती हूँ
0: जी।
1: तो पहले आप जानते हैं, आप कैलेंडर हुआ करते थे घर में, शिव पार्वती का कैलेंडर आप ये समझ लीजिए, वाल्मीकि समझ लीजिए मुझे
0: जी।
1: वाल्मीकि की तरह मैं शिव पार्वती के कैलेंडर को बड़े ध्यान से देख रही थी।
0: जी
1: पार्वती शिव की पूजा कर रही थी
0: हाँ।
1: और भगवान शिव की जो तस्वीर थी वो बहुत प्यार से पार्वती को देख रहे थे,
0: ठीक।
1: और पार्वती को शायद ये ऐसा कैलेंडर में था कि वो नहीं जानती थी कि शिव मुझे देख रहे हैं, वो मगन होके उनकी आराधना कर रही हैं।
0: जी
1: तो मैं बड़े ध्यान से देखती देखती देखती देखती, तो मुझे ख्याल सा आया, वो कुछ इस तरह था कि ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, लगते हो कुछ परेशान, हम नहीं है बेखबर। लेकिन ये मेरा अपना विचार था
0: उस समय, जो ख्याल मन में आया हुआ आपने लिखा।
1: ये मेरी पहली दो लाइनें हैं, एकदम शुरुआती दौर की पहली दो लाइनें हैं। अब पता नहीं अच्छी थी कि बुरी थी, कह डाली लिख डाली, जो अभी तक मुझे याद है।
0: याद है। आपका उपनाम सवि है, इसका मायने क्या है और कब से आपने इस उपनाम को लिखना अपने नाम के साथ शुरू किया?
1: जी, वैसे देखिए सवि का तो अपना कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, सवीना, सवीना जिसको आप कह सकते हैं कि वीणा
0: जी,
1: वीणा जो सरस्वती माँ के पास होती हैं
0: जी,
1: वीणा वो और सवीना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती के नाम से जुड़ा हुआ मेरा नाम है सवीना, तो माँ सरस्वती, सरस्वती भी कह सकते हैं आप इसको।
0: यानी कि आपको सवि के नाम से भी अब जाना जाता है।
1: जी जी जी, वो मैंने खुद ही अपने नाम को शॉर्ट कर लिया कुछ उपनाम सूझा नहीं तो अपने ही नाम को शॉर्ट कर लिया।
0: सवीना जी, क्या संगीत की, और जैसे आपने अभी बात की कि आपके घर में ही संगीत का माहौल रहा है और संगीत की तरफ आपकी कितनी रुचि है, हम चाहते हैं कि कोई अगर आपका मनपसंद गीत या गजल हो जो हम आपको भी और अपने श्रोताओं को भी सुनाएं।
1: जी, संगीत का मैं आपको बताऊं, संगीत मेरे लिए एक दवा की तरह काम करता है
0: जी।
1: खासकर पुराने गीत या गजलें, गुलाम अली जी
0: जी
1: उनकी गजलें मैं बहुत सुना करती थी, उस वक्त भी बहुत सुना करती थी और आज भी सुनती हूँ
0: जी।
1: वो मेरे लिए एक ऐसी दवा का काम करती, जितनी मर्जी टेंशन में हूँ मुझे एकदम रिलैक्स हो जाता है गजलें सुनकर, पुराने गीत सुनकर। एक गुलाम अली जी की एक अवारगी फिल्म का गीत है या गजल है ऐसा कह सकते हैं, चमकते चांद को टूटा हुआ सितारा बना डाला, वो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे लिए लिखा हो।
0: तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप श्रोताओं के लिए इसको गुनगुना सकते हैं,
1: चलिए कोशिश करते हैं। चमकते

0: सविना जी, आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक है मोती पलकों के, इसके बारे में बताएं, श्रोता भी जानना चाहेंगे।
1: काफी समय से लिखते लिखते डायरी की शक्ल तो बन ही गई थी
0: जी,
1: काफी समय से डायरी भी सिर्फ पड़ी हुई थी। आपको मैं बता दूं कि शादी के 20 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, इतना बच्चों में परिवार में इतना व्यस्त हो गई थी मैं। उस दौरान मैं ये सोचा करती थी कि ये मैंने ही लिखा है, बिल्कुल जैसे मैं भूल ही गई थी कि मैं लिखा भी करती थी कभी। शादी करके मैं जैसे जम्मू में गई, 8-9 साल वहां रहे, मिलिटेंसी के कारण हमें यहाँ वापिस आना पड़ा। तो वो लिखा हुआ था, तो जब जो जानने वाले थे मेरे घर में, रिश्तेदार थे, कुछ दोस्त थे, तो वो धीरे धीरे करके उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम लिखा करती थी, कहाँ है? मैंने कहा हाँ लिखा करती थी, पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बोला कि अपनी डायरी मुझे दे दो पढ़ने के लिए
0: जी।
1: कुछ झिझक भी हुई कि कुछ तो है नहीं, हाँ। उसमें बचपने का है, वो बचकाना चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने उनको वो डायरी निकाल के दे दी। कुछ बुरी सी अवस्था में भी थी, काफी सालों के से पड़ी हुई थी अलमारी में। तो वो जब डायरी निकाल के मैंने दे दी, वो चले गए, वो लखनऊ में रहते हैं। एक दो महीने के बाद जब डायरी उन्होंने मुझे लौटाई, तो ये पुस्तक के साथ लौटाई।
0: यानी उन्होंने उस डायरी को पढ़ा,
1: हाँ जी,
0: और उसके बाद उसको एक पुस्तक का रूप दिया।
1: हाँ जी, हालांकि ये पुस्तक मैंने आज तक सेल नहीं की, किसी को तोहफे में दे दी, किसी को अपनी निशानी की तरह दे दी, सेल नहीं की मैंने। बहुत मेरे लिए बहुत गौरव की बात है ये कि उन्होंने, मैंने उनको एक डायरी दी थी फटी पुरानी सी, उन्होंने मुझे ये पुस्तक के रूप में उसको लौटाई। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके जरिए करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बगैर उठाया
0: और आपके लिए हाँ एक जिंदगी भर का एक ऐसा तोहफा दे दिया।
1: तोहफा जी, बिल्कुल,
0: जो आप हमेशा याद करती,
1: बिल्कुल याद रखूंगी मैं इसको, मुझे ये शायद जान से भी ज्यादा प्यारी है।
0: एक कविता हो जाए इसमें से जो आपको सबसे पसंद है, और इस पुस्तक का नाम रखा गया है मोती पलकों के, तो सवि जी एक कविता हो जाए
1: जी। मैं आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी
0: जी,
1: कि उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी। उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, जहर अब कर चुका है असर जिंदगी। हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, और थोड़ी सी होती अगर जिंदगी।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, है किसी की नहीं ये अमर जिंदगी। जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, कोई करता नहीं है बसर जिंदगी।
0: जी।
1: मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, हमारे माता पिता
0: जी,
1: उनके लिए है ये शेर। मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, कट गया वो हमारा शजर जिंदगी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, खत्म लेकिन हुआ अब सफर जिंदगी। तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, रोक लेती कदम तू अगर जिंदगी।
0: बहुत खूब।
1: उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू ना ले इम्तहां इस कदर जिंदगी।
0: बहुत खूब,
1: बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सवि जी, ये गजल सुन के मुझे एक ख्याल आ रहा है, आपने कहा कि एक दौर ऐसा आया जब आपके परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा थी, आपने माँ का रोल निभाया, तो लिखने का आपने छोड़ ही दिया था, मतलब आप लिख नहीं रही थी।
1: जी जी जी।
0: तो यानी कि जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने कभी भी समझौता नहीं किया है।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही।
0: पर ये मानता हूँ कि मैं, जो हमारे अंदर एक कला होती है या जो हमारा एक पैशन होता है, वो कभी भी एक व्यक्ति के अंदर मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। तो जब आपने अपने आप को थोड़ा सा फ्री पाया,
1: हाँ जी,
0: बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो गई, उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू कर दिया?
1: जी ये भी आप ये कहिए कि मेरे जो मुझे जानते थे कि मैं लिखा करती थी, उन्होंने मुझे जगाया।
0: क्या आप जो कर रहे थे
1: जो ये मतलब उन किताब जैसे छपी तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि तू दोबारा लिख। मैंने शायद सोचा कि मैं नहीं लिख पाऊंगी
0: जी जी,
1: लेकिन मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर मैं अपने आदरणीय विनय सागर जायसवाल जी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिले, और वो मुझे जब मैं ये व्हाट्सएप पे ये भेजा करती थी तो वो बहुत तारीफ किया करते थे कि बहर के बहुत करीब हो तुम, थोड़ा सा और बहर में आ जाओ। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बहर होता क्या है, वन टू देखा करती थी मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी
0: जी।
1: फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे समझाना शुरू किया, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा यहाँ करना चाहूंगी कि उन्होंने वो मेरे दूसरे गुरु हैं,
0: यानी कि वो आपके मार्गदर्शक रहे हैं इस सफर में।
1: हाँ जी।
0: कोई और कविता आप सुनाना चाहेंगे?
1: ये देखिए मैं गा तो नहीं सकती वैसे, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी।
0: हाँ,
1: यहाँ पर
0: तरन्नुम में आप गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कला हमारे पास नहीं है। हमें बहुत खुशी होती है कि अगर हम तरन्नुम में सुने तो उसका आनंद और बढ़ जाता है।
1: जी। वफा किसी से निभा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, हथेलियां भी लगे महकने, हथेलियां भी लगे महकने, किसी का दामन सजा के देखो, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, जरा किसी को हंसा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, है कितनी बेकल हमारी आंखें, है कितनी बेकल हमारी आंखें, कभी तो पलकें उठा के देखो, सुना है सुनी है तेरी महफिल, सुना है सुनी है तेरी महफिल, तो आज मुझको बुला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, सुकून की हद जो देखनी हो, सुकून की हद जो देखनी हो, तो दर्द दिल में छुपा के देखो, हजारों हाथों की गूंज सुनना, हजारों हाथों की गूंज सुनना, गजल हमें तुम सुना के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, हर एक लम्हा भुला के देखो, तड़पते रहते हो जिनको पढ़ के, तड़पते रहते हो जिनको पढ़ के, वो सारे खत तुम जला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, करार मिलता कहीं ना हमको, करार मिलता कहीं ना हमको, सभी को थोड़ी पिला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एक कवि का जो मन है वो कहाँ से कहाँ जाता है।
1: हाँ जी।
0: और एक जगह बैठ के वो उस अपने मुरीद को या सुनने वालों को या चाहने वालों को पूरे विश्व का भ्रमण करा देता है। और आपने इसमें एक बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि नफरतों को मिटाना चाहिए, और अगर हमें एक अच्छा संसार और अच्छा देश, अच्छा समाज चाहिए, तो उनमें जो आपकी ये बात है और वो हमारी श्रोताओं तक पहुंच रही है, हम भी यही इल्तिजा करते हैं कि जो नफरतें हैं वो कम हो जानी चाहिए, वो मिट जानी चाहिए। गीत या गजलें आप कौन सी ज्यादा पसंद करते हैं? क्या किसी खास कलाकार को आप पसंद करते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं या सुनते आ रही हैं?
1: जी, मुझे पुराने गीत ही पसंद है। गजलों के जो गायक हैं वो मुझे गुलाम अली ही पसंद है। बाकी जो फिल्मी गाने की जो मैं बात करूं तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, मैं एक किसी एक को ऐसा नहीं है कि मैं पसंद करती हूँ। जो पुराने जितने भी हैं, किशोर कुमार साहब, रफी साहब और पंकज मलिक जी, हेमंत, गीता दत्त, हाँ जी, मुझे पुराने गीत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अभी हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि आपका जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, क्या चंडीगढ़ की कोई बचपन की कोई झलक आप हमारी श्रोताओं को देना चाहते हैं, ताकि हम बातों से ही उनको चंडीगढ़ में आपके उस दौर की ओर लेके जा सकें?
1: जी, चंडीगढ़ में बचपन बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा गुजरा। जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, ऐसा उस वक्त बिल्कुल नहीं था।
0: जी,
1: खुले खुले मैदान, बहुत ही खुले खुले मैदान, जिसमें हम सारा सारा दिन दौड़ा भागा करते थे, झूले लगे हुए थे, झूले लिया करते थे। और आजकल तो हम अपने बच्चों को शायद अकेला झील में जाने ही नहीं देंगे घूमने के लिए, तो हम सारा सारा दिन वहां पैर लटका के बैठे रहा करते थे पानी में।
0: अच्छा,
1: इतना आनंदित था हमारा बचपन, इतना आनंदमय था कि मैं आज बच्चों को जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही रहम आता है उनके ऊपर कि बड़ी बंदिशों में आजकल के बच्चे। इसी वजह से शायद पढ़ाई वढ़ाई कुछ कम ही रह गई हमारी, खेलकूद में ज्यादा समय बीता करता था। कभी कभी तो हम सारा सारा दिन घर ही नहीं आया करते थे कि घर जाएंगे तो खाना खाने के लिए रोक लेंगे, खाना भी नहीं खाना है। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत है चंडीगढ़, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतने फूल, झील का किनारा, बहुत सुंदर माहौल में मैं रही हूँ और वहीं बैठ के गजलें लिखा करती।
0: क्या कविता लिखने में भी वहां पर कुछ ऐसा माहौल बनता था कि कुछ ख्याल आते थे जो आप?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फूलों की क्यारियां वहां इतनी हुआ करती थी कि मैं बस दरी बिछा के लेट जाया करती थी और खूब लिखा करती थी। अकेली जब होती थी, मुझे मदद की है वहाँ का माहौल लिखने के लिए।
0: यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं को सुनाएं, तो क्या कोई फिल्मी गाना भी आपको पसंद है?
1: जी, मैं चंडीगढ़ की जो भूली बिसरी यादें हैं,
0: जी जी,
1: उन्हीं के ऊपर मुझे गीत याद आता है कि वो भूली दास्तां लोके याद आ गई।
0: तो बस आप गुनगुनाइए और हम फिर उस गाने की ओर चलते हैं।
1: जी, बहुत पुराना गाना है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: जी,
1: वो भू

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कवित्री सवीना वर्मा सवी जी। ये कार्यक्रम का अंतिम भाग है, चर्चा हमारी सवी जी के साथ जारी है। सवी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके लिखे शब्द आपके दिल को छूते हैं? अगर हाँ, तो मुझे विश्वास है कि आपके सुनने वाले और चाहने वालों को भी ऐसे ही आभास होता होगा।
1: जो ये लिखा हुआ होता है, मैं आपको एक बात बताऊंगी, ऐसा होता है लिखने वाले के लिए जैसे हमारे बच्चे हों
0: जी।
1: आप ये नहीं कह सकते मुझे ये बच्चा पसंद है, ये बच्चा नहीं पसंद है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: मेरी अपनी मासी का किस्सा है ये, शायद वो सुने तो। उनके उस जमाने में 9 बेटियां थी, पटियाला की बात है ये। गेस्ट हाउस था उनके पास, तो वहां पर अंग्रेज आके रुके बाहर से, उस वक्त बहुत घूमने फिरने आया करते थे। तो रुके तो उन्होंने बोला आपके पास 9 बेटियां हैं, हम पूरे डॉक्यूमेंट बना के पूरी अपनी जजात इसके नाम लिख के एक बेटी हमें दे दो।
0: अच्छा।
1: जितनी भी हमारे पास जजात है, जितनी भी धन दौलत है, हम इसके नाम लिखेंगे, फिर हमें ये गोद दे दो। उन्होंने वो बेटी गोद नहीं दी उनको, हालांकि खुद वो इतने रिच नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे, साधारण फैमिली थी। लेकिन वो तो वही मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे ही लिखने वालों के लिए अपनी गजलें, अपनी कविताएं ऐसी होती, सभी को अपनी गजलें या मुझे प्यारी होती हैं। और हाँ, बहुत दिल के करीब, जब मैं बहुत ही मतलब इमोशनल होती हूँ, या जब मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, कि जब बहुत ज्यादा मूड होता है ना लिखने का, कि जबरदस्ती नहीं लिखती हूँ, कि अपने आप से जबरदस्ती लिखवा डालूं,
0: कुछ ख्याल
1: जब अच्छे आते हैं मैं तभी लिखती हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं लिखती मैं। तो इसी के साथ एक गजल आपको सुना देती हूँ कि सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद बना सकते हैं, और जो रिश्ते होते हैं वो आपको भगवान की दया से ही मिलते हैं, लेकिन दोस्त आप खुद चुन सकते हैं। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने।
0: वाह।
1: सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने। उफ ये प्यारा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, उफ ये प्यारा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, ताज भी फीका लगे इस सादगी के सामने।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। बेखुदी है या नशा है या के दीवाने हैं हम,
0: बेखुदी है
1: या नशा है या के दीवाने हैं हम, कुछ नजर आता नहीं इस रोशनी के सामने। जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने।
0: क्या बात।
1: वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने, होश तो जाकर ना आया अब तलक यारो मेरा, होश तो जाकर ना आया अब तलक यारो मेरा, आज हम मजबूर हैं बस बेसुधी के सामने। गौर फरमाइएगा। मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, तू भी आके नाच ले इस बांवरी के सामने।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने।
0: बहुत खूब, आपने सवी जी मेरे सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया है, और जो मेरा सवाल था उस सवाल के बदले आपने जो हमें ये कविता सुनाई, ये सटीक जवाब है। और मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके कविता के चाहने वाले हैं, जो हमारी श्रोता हैं, ये कविता भी उनके दिल तक पहुंची होगी। अगर जिंदगी में हर कोई साथ छोड़ दे, पर दोस्त कभी हाथ छोड़ नहीं देता, ना वो साथ छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। सभी जी, जो आपने गजलें आज तक लिखी है, क्या आपकी गजल किसी गायक ने गाई है, या आने वाले दिनों में ऐसी कोई योजना है?
1: ये योजना तो कोई नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत लोग गाते रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि आपकी गजल जब हम गाते हैं तो हमें फरमाइश आती है, हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं कि सवीना जी की गजल गाइए।
0: बहुत अच्छी बात है ये
1: जी। ये मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ।
0: जी जी।
1: मेरी इच्छा है कि काश गुलाम अली जी मेरी एक गजल गा दे, लेकिन शायद ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, शायद जिंदगी में कभी उन तक पहुंचे।
0: नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर आप प्रयत्न करें तो कई बार ऐसी चीजें भी संभव होती है जो हमने सोचा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आप उनके साथ किसी न किसी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। हाँ मानते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है, शायद एक साधारण मैसेज का या किसी कारणवश वो जवाब ना दे पाए, पर मैं मानता हूँ हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, एक दिन वो जरूर आएगा। गुलाम अली साहब नहीं तो हमारे देश में बहुत अच्छे गजल गायक है, वो आपकी गजल को गाएंगे और आपके शब्दों को वो अपनी आवाज दे सके, उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कार्यक्रम के माध्यम से अपने गुरुजन को?
1: जी पहले गुरु तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा मेरे भाई साहब ही थे
0: जी,
1: और दूसरे गुरु मैंने विनय सागर जायसवाल जी का नाम लिया। मैं उन दोनों को रोज सुबह शाम जरूर एक बारी प्रणाम करती हूँ, शायद उन्होंने मैंने कभी कहा नहीं उनको, लेकिन मैं इस माध्यम से आपके माध्यम से उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे, विनय सागर जी ने बहुत कुछ सिखाया, लिखा भाव अपने होते हैं लेकिन उनको कोई चमका दे पॉलिश कर दे तो वो कुछ और ही बन जाते हैं।
0: और एक रास्ता बता दें कि हाँ, किस तरीके से हम अपने उस थॉट को, उस सोच को कैसे हम पेश करें। अंत में आपसे चाहता हूँ कि हमारे देश के जो नए कवि और कवित्रियां हैं, आप उनको अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो भी लिखना जारी रखें, एक वो मुकाम हासिल करें जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं?
1: जी मैं अपने अनुभव से तो मैं सबसे पहले तो माता पिता को यही संदेशा देना चाहूंगी कि बच्चों में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गुण जरूर होता है, हर इंसान में होता है, तो कोई भी गुण ऐसा देखें तो उसे प्रोत्साहित करें, उसे रोके नहीं, साथ खड़े हों उसका, जो शायद हमें नहीं मिला लिखने लिखाने का, सुनने सुनाने का। हमारा शायद ये सफर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब बच्चे जो भी उनके अंदर कोई भी ऐसा कुछ हुनर हो तो उसे छुपाए नहीं, मेरी तरह खुल के सामने आए, एक नहीं तो कोई ना पहला कदम उठाएं तो कोई ना कोई दूसरा कदम उठाने के लिए आपका हाथ जरूर थामेगा।
0: सभी जी आपकी बात सही है, बट तब से और अब के समय में बहुत बदलाव आ चुका है। आज पेरेंट्स इस सोच से होते हैं कि अगर बच्चे में उनका कोई हुनर है, उनमें कोई काबिलियत है तो वो उसका साथ देते हैं। तो क्या कोई और आप हमें कविता सुनाना चाहेंगे जाते जाते?
1: जी एक हल्की फुल्की सी गजल मैं सुना सकती हूँ आपको। जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
0: वाह।
1: जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए, इश्क का तब बुखार होगा कम, इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए। इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए। अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, फिर ना नाता महीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: शुक्रिया। हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, वो भी तो जानशीन हो जाए। वो जहां पांव रखते हैं अपने, वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए। वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए। आज छूने से जिसको डरते हो, आज छूने से जिसको डरते हो, आदमी वो कुलीन हो जाए। और गौरे तलब शेर देखिएगा कि नीम सी दोस्ती जरूरी है,
0: नीम सी दोस्ती जरूरी है,
1: कड़वी नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए। मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, अब सभी नामचीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: अब सभी नामचीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
0: सभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हुई, आप यहाँ आए, आपने अपने कविताओं के जरिए हमारे श्रोताओं को अपने जो शब्द है, लिखे शब्द है, वो आपने पहुँचाए। और आज जैसे आपने आखिरी जो कविता पढ़ी है, और आप नामचीन तो पहले ही हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप और मशहूर हो जाएं और बड़े स्तर पर आप मुशायरों में जाएं, आप अपना कविता पाठ करें वहां पर। जहां तक मेरा ख्याल है, हमारे पास जो कला होती है उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और इन शब्दों के साथ ही मैं आपका एक बार फिर अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं इजाजत आप सभी श्रोताओं से और इस प्रोग्राम का समापन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मैं आपका और श्रोताओं का और आप भारत जी आपका, रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे, छोटे से कलाकार को आपने मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त किया, और मैं चाहूंगी कि मैं फिर से आऊं।
0: बहुत बहुत
1: बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुक्रिया।

आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।

0: भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
1: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
0: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने। टिक टिक टिक टिक टिक।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा

0: प्यारे, तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: योसा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
4: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
5: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
4: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
5: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
4: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
5: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
4: गणपति बप्पा मोरिया।
6: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। नींबू, अमरूद, संतरा व चीकू के नए पौधे तैयार करने के लिए सितंबर के अंतिम दिन अनुकूल। सितंबर में गूटी ग्राफ्टिंग करें, अक्टूबर से घटेगी कलम और जड़ फूटने की रफ्तार। सदाबहार फलदार पेड़ों जैसे नींबू, अमरूद, संतरा और चीकू के नए स्वस्थ और उन्नत पौधे तैयार करने के लिए सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त और अंतिम मौका माना जाता है। करनाल के जिला उद्यान अधिकारी DHO कमल सैनी ने बताया कि मॉनसून की विदाई के समय हवा में मौजूद पर्याप्त नमी और हल्का तापमान कलम बांधने, एयर लेयरिंग व गूटी एवं ग्राफ्टिंग के लिए एकदम अनुकूल होता है। अक्टूबर शुरू होते ही तापमान में गिरावट आने लगती है और शुष्क हवाएं चलने से नए कल्ले व जड़े फूटने की दर धीमी हो जाती है। इसलिए बागवानों और किसानों को सितंबर के शेष दिनों में ही यह कार्य पूरा कर लेना चाहिए। विशेषकों के अनुसार इस समय पौधों में नमी का संतुलन बना रहता है, जिससे कलम और ग्राफ्टिंग के बाद जुड़ाव तेजी से होता है। कार्य करते समय स्वस्थ मात्र पौधे का चयन करें और कटे हिस्से को साफ रखकर उचित नमी बनाए रखें। स्वस्थ मात्र वृक्ष चुनना सबसे जरूरी। कलम बांधने के लिए मात्र वृक्ष का चयन सबसे अहम कड़ी है। जिस पेड़ से कलम ली जा रही हो वह पूरी तरह स्वस्थ, रोग मुक्त और नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता के फल देने वाला होना चाहिए। नींबू, अमरूद, संतरा या चीकू के पेड़ से लगभग 1 से 2 वर्ष पुरानी पेंसिल के आकार जितनी मोटी और सीधी बढ़ने वाली शाखा का चुनाव करें। अधिक पुरानी या बहुत कोमल हरी टहनी पर जड़े निकलने की संभावना काफी कम होती है। छाल हटाकर मार्स और पॉलीथीन से शाखा पर तैयार करें जड़ें। शाखा के चुने हुए स्थान पर पत्तियां हटाकर चाकू से 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा छिलका गोलाई से उतार लें। इसके बाद तने की ऊपरी हरी परत को हल्के से खुरच दें। कटे हुए भाग पर रूटिंग हार्मोन ICBA पाउडर लगाएं या प्राकृतिक तौर पर एलोवेरा जेल का लेप करें। अब नम मार्स ग्रास स्फागनम मार्स या चिकनी दोमट मिट्टी व संडी गोबर की खाद से मिश्रण को कटे हुए हिस्से के चारों ओर लपेटें। ऊपर से 200 गैज की पारदर्शी पॉलिथीन शीट लपेटकर दोनों सिरों को सूतली से कसकर बांध दें। नर्सरी और नए पौधों की देखभाल। लगभग 35 से 45 दिनों में पारदर्शी पॉलिथीन के भीतर से सफेद रंग की जड़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। जब जड़ें पूरी तरह विकसित और हल्की भूरी हो जाएं, तब शाखा को गांठ के ठीक नीचे से आरी की मदद से काटकर मुख्य पेड़ से अलग कर दें। इसके बाद पॉलिथीन को सावधानी से खोलकर पौधे को 50% मिट्टी और 50% वर्मी कंपोस्ट से भरें। पॉलीबैग या गमले में लगा दें। नए पौधे को शुरुआती 15 से 20 दिनों तक सीधी धूप से बचाकर छायादार स्थान पर रखें और हल्की सिंचाई करते रहें। बंद गोभी की अगेती बिजाई का अभी सही समय। 5 सप्ताह में तैयार हो जाएंगी पौध। बंद गोभी के लिए प्रति एकड़ 250 ग्राम बीज डालें किसान। बंद गोभी व गांठ गोभी की अगेती किस्मों की बिजाई के लिए यह उपयुक्त समय है। बंद गोभी की किस्में प्राइट ऑफ इंडिया या गोल्डन लगाएं। गांठ गोभी की किस्में अर्ली वाइट वियाना प्रयोग करें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज ने बताया कि बंद गोभी की एक एकड़ के लिए 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। गांठ गोभी की किस्म अर्ली वाइट वियाना प्रयोग करें। इसके लिए 800 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पौध तैयार होने में 5 से 6 सप्ताह का समय लगेगा। बीज बोने से पहले कैप्टान नामक दवा से उपचारित 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। फूलगोभी की अगेती किस्म पूसा कातकी के खेत की उचित देखभाल करें। सिंचाई करें और रोपाई के लगभग 3 सप्ताह बाद प्रति एकड़ 35 किलोग्राम यूरिया यानी 16 किलोग्राम नाइट्रोजन व फूल बनने की अवस्था में भी 35 किलोग्राम यूरिया यानी 16 किलोग्राम नाइट्रोजन से टॉप ड्रेसिंग करें। नाइट्रोजन देने के बाद सिंचाई करें। हिसार एक की 15 सितंबर तक बिजाई करें। फूल गोभी की मध्य मौसमी किस्मों हिसार एक की रोपाई कर सकते हैं। इसकी रोपाई अच्छी तरह तैयार खेत में 15 सितंबर तक करें। पौधे से पौधे की दूरी व लाइन से लाइन की दूरी मध्य वर्ग से 60 सेंटीमीटर रखें। पछेती किस्म स्नोबॉल 16 की बिजाई भी नर्सरी में इसी माह के अंत में शुरू की जा सकती है। इस समय अगेती गोभी को सुंडी आदि के प्रकोप से बचाने के लिए 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 ईसी को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर हर 10 दिन बाद छिड़काव करें। टमाटर का सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाव करें। सब्जी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश तेलहन के अनुसार टमाटर की अगस्त में रोपी गई पौध की देखभाल करें और नाइट्रोजन खाद की पहली मात्रा रोपाई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद डालें। एक एकड़ खेत में लगभग 14 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम यूरिया देकर सिंचाई करें। नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा फसल में फूल आने की अवस्था में देनी होती है। यदि अधिक वर्षा हो तो जल निकास का प्रबंध करें और सूखा होने पर सिंचाई करें। सफेद मक्खी का प्रकोप होने पर 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 ईसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। विषाणु रोग को फैलाने वाली सफेद मक्खी की भी मैलाथियन से रोकथाम की जा सकती है। धान का विकल्प बन सकती है मक्का की खेती। पानी बचेगा और लागत घटेगी, लेकिन बाजार में उचित कीमत बड़ी चुनौती। पूर्व ICAR निदेशक बोले, प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही सरकार। हरियाणा में तेजी से गिरते भूजल स्तर के बीच धान की जगह मक्का को बढ़ावा देना फसल विविधीकरण का मजबूत विकल्प है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पूर्व निर्देशक डॉक्टर साईं दास के अनुसार धान की तुलना

हाइब्रिड बीज और किसानों को बाजार उपलब्ध कराने पर मक्का को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। हरियाणा सरकार भी मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। पोल्ट्री फीड, स्टार्च और एथेनॉल उद्यानों से बढ़ेगी मांग। हरियाणा में पोल्ट्री फीड, स्टार्च, फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल उद्यानों में मक्का की बढ़ती मांग किसानों के लिए बड़ा अवसर बन सकती है। इसके लिए स्थानीय मक्का वैल्यू चेन विकसित करनी होगी। ड्राइंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, परिवहन और प्रोसेसिंग सुविधाएं विकसित होने पर किसानों को स्थिर बाजार और बेहतर कीमत मिल सकती है। सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसान पीछे हट रहे। मक्का के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था नहीं है, ऐसे में किसान निजी व्यापारियों और कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहते हैं। MSP आधारित समर्थन मूल्य की गारंटी, अनुबंध आधारित खरीद और FPO के माध्यम से सामूहिक बिक्री को बढ़ावा देना जरूरी है। क्लाइमेट रेजिलिएंट मक्का किस्मों की जरूरत बढ़ेगी। बढ़ते तापमान और मौसम में बदलाव के कारण आने वाली वर्षा में सूखा और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट मक्का किस्मों की जरूरत बढ़ेगी। सही हाइब्रिड, वैज्ञानिक खेती और बाजार मिलने पर हरियाणा मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हो सकता है। ये थे आज की कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सके। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती हैं।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस के अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरोइंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरोइंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है,
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात को रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है।
0: जी।
1: जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4-6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अ डे अ वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये है आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नफरत की

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।

0: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
1: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
0: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आर.डी. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। कभी 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधारे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
0: गणपति बप्पा मोरिया।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हसरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल सन 1922 को हुआ था। हसरत जयपुरी, जिनका नाम इकबाल हुसैन था। हसरत एक शायर थे, हिंदी उर्दू जुबानों में लिखा करते थे। वे हिंदी फिल्मों में एक मशहूर फिल्म गीतकार भी साबित हुए।
1: कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से।
0: सन 1967 और सन 1972 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। हसरत सन 1940 में जयपुर से मुंबई आए। जा जा जा।

0: फिल्म के लिए मौसीकार शंकर जयकिशन से मिलवाया और बरसात फिल्म के लिए गाने लिखने की गुजारिश की। पहला गीत जिया बेकरार है और दूसरा एक दो गाने की सूरत में छोड़ गए बालों। फिर क्या था, हसरत जयपुरी की किस्मत जाग गई। फिल्म बरसात, श्री 420, अंदाज, ससुराल, सेहरा, गीत गाया पत्थरों ने, जंगली, पगला कहीं का, आरजू, लवन, टोकियो, भूत बंगला, सांझ और सवेरा, तीसरी कसम, राम तेरी गंगा मैली, लाल पत्थर, राजकुमार, संगम।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो

हसरत जयपुरी 17 सितंबर सन 1999 को इस दुनियाई फानी से कूच कर गई। बेशक मौत एक सच्चाई है, पर यह भी अपनी जगह सही है। हसरत जैसे गीतकार शायर कभी मरते नहीं।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं।

अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों की महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

0: किसी का आंचल, आंचल में क्या जी
1: अजब सी हलचल।
2: शुक्रिया कहना भी एक तरीका होता है, प्यार इजहार नहीं एहसास बन जाए तो।
0: बहुत

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित

0: स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम

0: चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

शमशाद बेगम मानती थी कि कलाकार कभी नहीं मरते। अपनी खनकती और लचकती आवाज के साथ शमशाद अमर है। भले ही 23 अप्रैल मंगलवार की रात शमशाद जन्नत नशीब हुई, लेकिन जब भी हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, 1940 से 1950 के दौर में उनकी आवाज को दर्ज किए बगैर वो अधूरा रहेगा। शमशाद अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती थी और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। शमशाद की बेटी उषा के मुताबिक अपने जमाने की सबसे बेहतरीन गायिका होते हुए भी उन्होंने खुद को ग्लैमर की दुनिया से दूर रखा। उषा की माँ यानी शमशाद कहती थी कि उन्हें उनके गीतों के लिए दुनिया हमेशा याद करेगी। इसमें कोई शक नहीं, कहीं पे निगाहें मेरे पिया के रंगों, कभी आर कभी पार, कचरा मोहब्बत वाला जैसे गाने हर जमाने में गाए गुनगुनाए गए हैं।

शमशाद ने गीतों से लेकर गजलों और कव्वाली तक गायकी की कोई ऐसी विधा नहीं थी जिसमें उन्होंने फिल्मों में नहीं गाया। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पारंपरिक परिवार में हुआ था। शमशाद केएल सहगल की जबरदस्त फैन थी। शमशाद पांचवी कक्षा तक स्कूल में होने वाली प्रार्थनाओं के लिए प्रमुख गायिका थी। 10 साल की उम्र में ही शमशाद शादी के समारोहों और बाकी समारोहों में पारंपरिक और लोक गीत गाने लगी थी।

इसी दौर की बात है, जीनोफोन रिकॉर्ड कंपनी नई आवाजों की तलाश में थी। शमशाद अच्छा गा सकती थी, लेकिन उनके रूढ़िवादी परिवार को संगीत से कोई लगाव नहीं था और ना ही वे लोग शमशाद के गायिका बनने के लिए राजी थे। सौभाग्य से शमशाद का हौसला बढ़ाने वाले चाचा उनके पिता की इच्छा के खिलाफ उन्हें रिकॉर्ड कंपनी के पास लेकर गए। उनका ऑडिशन मास्टर गुलाम हैदर ने लिया। मजबूरन पिता को अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा और शमशाद को गाने की इजाजत दे दी गई।

शमशाद बुरके में स्टूडियो जाती थी, पार्टी या बाकी समारोह में शरीक नहीं होती थी और तस्वीरें भी नहीं खिंचवाती थी। सन 1934 में उन्होंने गणपत लाल से शादी की। शमशाद के पति फोटोग्राफी के शौकीन थे। 70 के दशक तक भी शमशाद ने तस्वीरें नहीं खिंचवाई। बात चाहे जीनेफोन कंपनी की हो या फिल्मों की, अपने पंजाबी और हिंदी गानों से शमशाद ने लोगों के दिलों में एक अलग ही मुकाम बना लिया था। उन्होंने गुलाम हैदर के निर्देशन में 200 गाने गाए जो सिर्फ रेडियो पर नशर हुए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर ये गाने रिलीज नहीं किए गए। 30 के दशक के आखिर में उनके दो जाती गाने तेरे पूजन को भगवान और ओम जय जगदीश काफी ज्यादा चर्चित हुए।

फिल्मों में गायन के आगाज से पहले शमशाद ने दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में भी गाने गाए। तब भी इनके संगीत निर्देशक गुलाम हैदर ही थे।

सन 2009 में शमशाद को पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। शमशाद की जादुई आवाज एक बार ही जन्म लेती है, बार बार नहीं। हिंदी सिनेमा की सबसे मीठी और सुरीली आवाज, सबसे मशहूर आवाजों में से एक आवाज अब खामोश हो गई है। शमशाद खुदा का खौफ रखने वाली और नेक ख्याल की थी, सबकी मदद करने वाली और सबसे मिलजुल कर रहने वाली।

40 के दशक में हर फिल्मकार की यही चाहत होती कि शमशाद उनकी फिल्म की गायिका बने। सुरू की मलिका की आवाज से महबूब खान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्हें मुंबई आने को राजी कर लिया। उनके लिए शमशाद ने तकदीर फिल्म के गाने गाए। बतौर नायिका नरगिस की ये

कई दशकों तक हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक मकबूल गीतों को आवाज देने वाली शमशाद बेगम कमाल की कलाकार थी। उनका तलफ्फुज सुरों पर पकड़ और उनकी लोचदार आवाज उन्हें दूसरों से अलग करती थी। नौशाद और ओपी नैयर के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम

जिस्मानी तौर पर भले ही शमशाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन गायकी के लिहाज से और उनकी शख्सियत के हिसाब से वो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहेंगी।

राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में एचएस रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। एचएस रवेल ने ही आगे चलकर राजेंद्र को लेकर फिल्म मेरे महबूब का निर्माण किया, जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी।

फिल्म निर्माण के गुर सीखने के दौरान ही राजेंद्र कुमार के मन में अभिनय यानी एक्टिंग की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद एक एक्टर के तौर पर पहली बार उन्हें दिलीप कुमार के साथ फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला था। यहीं से वो लगातार कामयाबी हासिल करते गए और 1956 में उन्हें फिल्म आवाज में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में एक अच्छे बेटे का किरदार निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा उन्हें। यह सिलसिला जारी रहा। 1959 में गूंज उठी शहनाई ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दिलाया।

अगले ही साल उन्होंने कानून और धूल का फूल जैसी फिल्में दी, जो लगभग गूंज उठी शहनाई के समय में ही रिलीज हुई थी। वो हमेशा अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक रहते थे, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक अलग तरह की इमेज में बांध कर रख दिया। 60 के दशक में उन्होंने आस्क पंछी, ससुराल, हमराही, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, जिंदगी, संगम, आरजू, सूरज जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी।

उनकी सफलता के चढ़ाव के इस दौर के बाद एकदम इसमें उतार आया और उनकी अमन झुक गया आसमान, पालकी, साथी और शतरंज जैसी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने गवार, गांव हमारा शहर तुम्हारा और तांगे वाला जैसी औसत दर्जे की फिल्में की, मगर उन्हें पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली।

70 के दशक में जब राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई थी, तब राजेंद्र कुमार अभिनीत और राजकुमार कोहली की फिल्म गोरा और काला आई और सुपरहिट साबित।

सन 1980 के बाद राजेंद्र कुमार ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे कुमार गौरव का करियर बनाने के लिए दिया। 1981 में उन्होंने अपने बेटे को लेकर फिल्म लव स्टोरी का निर्माण किया जो सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को लेकर नाम, जुरत और फूल जैसी फिल्मों का निर्माण किया, मगर कुमार गौरव अपने पिता की विरासत को आगे न ले जा पाए। इसका दुख राजेंद्र कुमार को साल-साल तक

राजेंद्र कुमार अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी बीमार पड़े होंगे, पर 1999 में एक दर्दनाक बीमारी के चलते वो इस दुनियाई फानी को

उनके दौर की फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए राजेंद्र कुमार भी उतने ही बड़े ट्रेजेडी किंग थे जितने बड़े ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को माना जाता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब समाप्त हो रहे हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, और बहुत सारे श्रोताओं के अनुरोध हमारे तक पहुंचे हैं कि प्रसारण का समय बढ़ाया जाए। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम आपको अवगत कराएंगे कि जब हम अपने प्रसारण का समय 6 बजे से लेकर 9 बजे से बढ़ाकर अगले समय तक करें। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:26। दोस्तों, गुप्तगु करते करते आज का ये सफर भी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। उम्मीद है वितस्ता की यह धारा आपके दिल को छू गई होगी और आपके शाम को थोड़ा और सुकून भरा बना गई होगी। हर दिन हम एक खास विषय पर बात करते हैं और आपको अम्बाला की जानकारियां भी आपको देते हैं। एक जल्दी जल्दी से एक जानकारी आपको देता हूं। आज अम्बाला कैंट में प्रख्यात कवि, समाजसेवी, शिक्षा विद्वान डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा अपनी लिखी 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया एक भव्य आयोजन में किंगफिशर अम्बाला छावनी में। अम्बाला के गणमान्य लोग मौजूद रहे इस आयोजन में, और मुख्य अतिथि के रूप में थे श्री प्रदीप खेड़ा जी और श्रीमती नीता खेड़ा जी, और भी बहुत सारे लोग थे। 2 पुस्तकें कवि हृदय और बहुवर्णी का विमोचन किया गया, और डॉक्टर मल्होत्रा ने अपनी मधुर वाणी में बहुत सारी कविताओं के कुछ पंक्तियां भी गाई भी और सुनाई भी। और रेडियो वितस्ता को गर्व है कि रेडियो वितस्ता के बारे में भी उन्होंने 2 कविताएं लिखी जो उस किताब में अपनी जगह बना पाई है। डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप वेस्ट थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अम्बाला को और FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता को अपना प्यार स्नेह देते हैं, और साथ में फिनेंशियल तौर पर भी आप हमारा सहयोग करते हैं, जिससे हम लोगों के लिए और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत से अलग अलग लोगों से जानकारी हुई और खुशी हुई कि लोग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता को सुनते हैं, और उनका ये मानना है कि समय कम है, समय बढ़ाया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम जरूर आपको अवगत कराएंगे जब हम अपने प्रसारण का समय आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज एक और विषय पर बात करते हैं, एक बेहद सार्थक विषय। रिश्तों में समय देना ही सबसे बड़ा उपहार है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां हर कोई अपने काम, अपने मोबाइल और अपनी दुनिया में उलझा हुआ है, वहीं सबसे ज्यादा जो चीज पीछे छूटती जा रही है वो है अपनों के लिए समय। हम अक्सर सोचते हैं कि महंगे तोहफे या सुविधाएं देकर हम अपने परिजनों को खुश कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी चीज आपके साथ बिना बताए गए पल की जगह नहीं ले सकती। माता पिता को बच्चों का साथ चाहिए, बच्चों को माता पिता का ध्यान चाहिए, और जीवन साथी को एक दूसरे का समय चाहिए। जब हम अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा वक्त निकालकर अपनों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो रिश्ते और गहरे तथा मजबूत होते हैं। समय का ये उपहार पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, आए हम आज ये प्रयास करें कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अपने परिवार और अपनों के लिए रोज थोड़ा समय जरूर निकालें, क्योंकि यही पल आगे चलकर सबसे अनमोल यादें बन जाती है। वैसे भी कहा जाता है कि जितने भी हमारे वृद्धजन है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान है, तो उनका ध्यान रखिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। हर दिन हम किसी विषय पर बात करते हैं, और आज का विषय ये था, और साथ में हम आपको सुनाते हैं कुछ पंक्तियां। आज आप सभी श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियां मैं लाया हूं जो आपको समर्पित है। आज की पंक्तियां यूं हैं, वितस्ता न सिर्फ एक नदी एक एहसास है। वितस्ता न सिर्फ एक नदी एक एहसास है, इसकी हर धारा में बसा एक इतिहास है। जो भी जुट जाए इसकी सरगम से एक बार,
जी हाँ दोस्तों, जो भी जुड़ जाए इसकी सरगम से एक बार, उसके दिल में हमेशा के लिए ये खास है, उसके दिल में हमेशा ये खास है। तो ये थी आज की पंक्तियां, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 21 सितंबर 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6:00 भक्ति संगीत आप सुनेंगे। 7:05 पर सोमवार को आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कल होगा एपिसोड 4, हमारे साथ होंगी डॉक्टर श्वेता शाह, पेश करेंगे भारत सोपोरी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय, एपिसोड 1 सच्चा प्यार होगा, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 पहलू और गीत एपिसोड 6, शीर्षक होगा तड़प, पेश करेंगे आरजी किरनी। और 10:05 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम एपिसोड 3, और ये कार्यक्रम हमने रिकॉर्ड किया था डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी के साथ, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, और 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7:00 पहला प्यार एपिसोड 1 होगा, और 8:30 सुहाना सफर हर दिन की तरह कार्यक्रम, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है जगजीत की याद में, तो ये गजलों का कार्यक्रम जरूर सुनिएगा आप कल 8:30। और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। तो श्रोताओं, ये यहीं समेटते हैं आज का ये प्रसारण। भरोसा है कि ये वक्त आपके साथ अच्छा बीता होगा और आपके दिन में थोड़ा मिठास घोल गया होगा। तो मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी अब आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।